की आवाज में नाचते हुए बुलाया श्री रामचंद्र का।

0: पिता कवि प्रभु के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत ला

शुरुआत करते हैं आज फिल्म के इस गाने के साथ, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में, अशोक भोपाली के बोल और संगीत है

कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में ए उच्चार के बोलते और

और आशा भोसले की आवाज़ में शामिल लुधियानवी के बोल रही गाते हैं।

0: पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद केस सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे।

का मुख्य क्षेत्र प्रकाशित किया है।

सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाई।

एक बार जो एक सिलसिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम है, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सबके बीच हमारे पास हमारा अपना रास्ता है, वो है मुस्कुराना और सिलसिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं तो मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से,

कम करती है। और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना

पल भर में दिला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूल कर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नजरिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए और कुछ इस बात की तरह की मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे और जी लेंगे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से और साथ में आस पास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।

Thank you.

सोनू निगम, हरिहरन, रुक मराठौर और साथियों की आवाज में जावेद अख्तर के बोल

प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद कर रहे हैं। आजादी के बाद नव भारत के निर्माण में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है। उनकी स्मृति को सादर

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापर और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 70,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त

पेठा छाव त्याग और संपन्न की भावना इस प्रतीक बकरी पर की ढेर सारी पधारी।

0: जिनसे आप सुन रहे थे एआर रहमान, जावेद अली और मोहम्मद और मोहित चौहान की आवाज में गाना। इजाज़ कामिल के बोल एआर रहमान का संगीत। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री नीतू प्रदीप साझा कर रही है अपनी किताब कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: सुनना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई

उनका अगला गाना सुनते हैं नील एंड निकी सिंह से सोनू निगम माँ लक्ष्मी अय्यर फिल्म के आवाज़ में अमृता गुप्तन की बोल और संगीत है सलीम।

छोड़ा है। यकीन नहीं आ रहा? आ जाएगा यकीन, अगला गाना सुन लीजिए, लव ब्रेकअप जिंदगी, तुमसे बनी दयाल और श्रद्धा पंडित की आवाज में जावेद अख्तर की बोल, सलीम सिनेमा।

0: से उसे रंगोली हंसी की खनक यादों की महक बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जुड़े विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की बरसात पर

点赞了。हमारे भी साझा करेंगे अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

कुमारी के बाद अब सुबह की उत्पाद रह गया है। बचपन का नाम बलराज दत्त था। हरियाणा के मंदाली में इनका बचपन बीता, फिर लखनऊ होते हुए बलराज दत्त मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क। और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी, और क्योंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख लिया। और अब भटकने का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इन्हीं दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। ये वो दौर था जब रेडियो की लोन को एक उद्घोषित जरूरत थी। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर यही नर्गिस उनकी जीवन संगी बन जाएगी। इस कहानी पर हम बाद में आएंगे, पहले चलते हैं सन 1955 की तरफ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, सुनील दत्त रेडियो सीलोन के लिए कई नामी फिल्मी हस्तियों के इंटरव्यू दिया करते थे, और फिल्मी हस्तियां कहती कि भाई तुम्हारे पास पर्सनालिटी है, टैलेंट है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करते। और इसी तरह की बात रमेश सहगल ने बोली और सुनील दत्त ने हाँ कर दी। इस तरह से सन 1955 में सुनील दत्त फिल्मी पर्दे पर नजर आए

प्लेटफॉर्म के बाद उनके पास ज्यादा काम नहीं था। जो फिल्में मिली उनमें से कुछ ठीक ठाक चली और कुछ ठीक ठाक भी नहीं चल पाई। बस यही बात था जब जाने माने निर्माता निर्देशक महबूब खान ने उन्हें पेशकश की मदर इंडिया में मिर्जू का रोल करने की। मदर इंडिया महबूब खान की फिल्म औरत का रीमेक थी और एक ऐसी दौर में आ रही थी जब आजाद भारत के 10 साल पूरे हो चुके थे और देश नव निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा था। कहीं न कहीं थोड़ा असंतोष भी था कि ये वो मंजिल नहीं है जिसकी तलाश में हम निकले थे। सुनील दत्त ने मदर इंडिया में मिर्जू का किरदार निभाया जो सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ है और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करते हुए डाकू बन जाता है और आखिरकार उसके गलत रास्ते से सहमत नहीं है। आइए अब जरा चलते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ। बिली मोरा में मदर इंडिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी।

बहुत सफर करते और नरगिस और सुनील जैसे एक दूसरे को प्यार भरे खत लिखते। एक तरफ एक खतों में नरगिस को मर्लिन मुनरो कहकर पुकारते और इन खतों में नरगिस जब सुनील जैसे को लिखती

you.

शुरू के निर्देशन वाली फिल्म पड़ोसन किशोर कुमार, मुकरी, सायरा बानो और सुनील दत्त के अभिनय वाली

1974 में फिल्म गीता मेरा नाम में बतौर खलनायक नजर आए। सन 1963 में श्री दत्त ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया।

दत्त ने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की और इसके जरिए कैंसर पीड़ितों के सिलसिला लगातार जारी रहा। इस बीच वो बाहर की भी कुछ फिल्में करते रहे। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सुनील दत्त ने कुछ पंजाबी धार्मिक फिल्मों में भी काम किया था, जैसे सन 1973 में आई थी मन जीते जसी, सन 1974 में आई दुख भंजन तेरा नाम और सन 1977 में आई सत श्री अकाल। आइए अब बात करते पुरस्कारों की। सन 1963 में फिल्म मुझे धीरे दो के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1964 फिल्म ज्यादे को मिला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार। सन 1965 फिल्म खानदान के लिए सुनील दत्त को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। सन 1995 में फिल्म संसार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए फिल्म फेयर ने सुनील दत्त को लाइफ

उन्नीस व्यक्ति की दो बड़ी फिल्में आई, सन 1992 में आई परंपरा, सन 1993 में आई क्षत्रिय। सुनील दत्त और संजय दत्त बहुत कम फिल्मों में एक साथ नजर आए। फिल्म रॉकी में दोनों ने काम किया, लेकिन दोनों का एक साथ कोई सीन नहीं था। पर आज लेकर सन 2007 में आई राजकुमार हिरानी के निर्देशन वाली फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस, ये वो फिल्म थी जिसमें सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त एक ही सीन में नजर आते हैं। सुनील दत्त सक्रिय राजनीति में भी चले गए थे और वहाँ उन्होंने जमकर काम किया। 25 मई 2005 को दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में सुनील दत्त का निधन हो गया। संसार ने एक बेहतरीन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और उससे भी बढ़कर एक बेहतरीन को खो दिया। जिसकी जिंदगी जद्दोजहद का एक अदम्य सिलसिला थी, वो किसी भी मुसीबत से हारे नहीं,

safety rides, flash rides, और दिल को जोड़ने के लिए हमारे लिए बस एक हिट पर हमारी स्टेशन लाइव।

क्या है, मुसीबतों से लड़ो, हौसलों की बात करो। फतेह राय स्थानीय की रुचि गजलाइए सुनते फतेह सिंह द्वारा।

भी तस्वीर हो मुझकी रहे आंखों की तरह।

सेफ्टी वाइज आकाश वाइज और दिलों को जोड़ने के लिए हमारे लिए है बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर नया भारत

हम रोजमर्रा के कुछ शौकीन लोगों से रहते हैं कि हमें ये दिखता ही नहीं कि हमारे बच्चे इंसान के रूप में

तो नहीं, हम भी पुरानी सच्चाई को देखते हैं।

Porque a gente vê que aquele bebê se sente com a gente de criar, de continuar, a aprender nem como é que é, com que tipo de आपको परेशानी नहीं करती, कौन सी समस्या बिना आपके ध्यान के हल हो जाती है, ये भी देखना जरूरी है। दोस्तों, दुनिया अव्यवस्थित है और हमेशा रहेगी।

वो पीड़ित होते थे, मारे भी जाते थे और उनकी मदद के लिए भेजा गया धन भी चोरी हो जाता था। प्राचीन रोम में भी तानाशाह और अत्याचारी लोगों की भरमार थी, जिन्हें हमेशा चंदों से दो छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे हैं। सरकारें अव्यवस्थित रही हैं, हमेशा से तनाव बना रहा है, जीवन कठिन जरूर रहा है।

तो आज 27 मई है, इतिहास का वो पन्ना जिसने आज ही के दिन साल 1964 में भारत एक महान नायक को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री आधुनिक भारत के शिल्पकार पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। आज उन्हें पूरा देश नमन कर रहा है। 14 नवम्बर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे जवाहरलाल नेहरू एक दूरदर्शी लेखक, प्रखर वक्ता और एक ऐसे स्वप्न दृष्टा थे जिन्होंने आजादी के बाद बिखरे हुए भारत को अपने पैरों पर खड़ा किया। जब 16 अगस्त 1947 की आखिरी रात को दुनिया छोड़ रही थी, तब नेहरू जी के

उन्होंने वैश्विक मंच पर भारत को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष पहचान दिलाई। उनकी पुस्तकें जैसे भारत की खोज हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। 27 मई आज का दिन 1964 को दोपहर के करीब 2 बजे जब उनके निधन का आधिकारिक घोषणा हुई, समारोह पूरे देश

पन्नों में आज का आज की तारीख का पन्ना एक और ऐसे के नाम से सजा हुआ है जिन्हें उनकी पुण्यतिथि पर हम याद कर रहे हैं।

सफेद चौथाई पर बर्फीली वादियों में आतंकियों ने घुसपैठ की थी और हवलदार हंग पंजाब अपनी टीम की अगुवाई कर रहे थे। अचानक आतंकियों की तरफ से अंतर्धुंद फायरिंग शुरू हो जाती है। परिस्थिति लेकिन हमारे दादा के हौसले के आगे पहाड़ भी छोटे पड़ गए। उन्होंने आमने सामने की लड़ाई में कुछ को मार गिराया और चौथे को गंभीर रूप से घायल।

Mais सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। हंगपन दादा भले आज हमारे बीच मौत बहुत रूप से नहीं है, लेकिन उनका शौर्य और हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहेगी। उनकी पुण्यतिथि पर हम सब मिलकर उन्हें नमन करते हैं। शहीदों की किताबों की शहीदों की किताबों को

चौहान माफ कीजिए गुलजार और अलामा इकबाल के शब्दों को संगीत से सजाया था शंकर एंड साउंड लॉयर।

सबों का कार्यक्रम नमस्कार जमशेद को मैं नया दिन रहा दोस्तों बॉलीवुड की बात करते हैं। जब हम बॉलीवुड फिल्मों में हवा में उसी कार्य हीरो की हम आज

अपनी पहचान बनाना।

शेट्टी से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े एक्शन डायरेक्टर आज भी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। वीरू जी जैसे कमाल के चरित्र ही नहीं

हम हॉलीवुड स्तर का एक्शन भारत में भी कर सकते हैं। देव देवगन भी आज हमारे बीच शारीरिक रूप से भले न हो, लेकिन जब भी रुपये की बेटी को जीरो बुराई से लड़ेगा, हवा में उड़कर जन को झूठ सकेगा, वीरों का नाम और उनका काम हमेशा अमर रहेगा और उनको

फराज ने अपनी आंखों से रोमांच को एक नया

उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में भी अचानक कोई जैसे सीरियल से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। साल 2020 में सेहत खराब होने की वजह से वे बहुत जल्दी मर गए। मैंने 50 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। भले ही आज फराज खान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका काम, उनकी वो प्यारी आंखें आज भी, उनकी मुस्कान आज भी

आपके साइड लड़ना और जीतना। जी हाँ दोस्तों, चैंपियन ऑफ चैंपियन, ऑलराउंडर और हम सबकी पसंदीदा आवाज रहे रवि शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। ये उनकी आवाज सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1985 की वो ऑडियंस आज गया है दोस्तों, जब और मैदान पर उनका वो बेखौफ अंदाज और टीम इंडिया के कोच के रूप में

मेल करूंगी हैप्पी बर्थडे और कलम आवाज से जो हमें हमेशा हमारा मनोरंजन करती हैं उन्हें हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और रवि शास्त्री जी के स्टाइल में बस इतना ही कहना चाहूंगी, प्रेशर बुलेट की तरह सीधा चलते रहिए लाइफ में, कभी मत रुकिए।

मौसम की बात करें तो अधिकतम तापमान आज का है 39.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.2 डिग्री सेल्सियस। आज का सूर्यास्त होगा शाम 6:22 पर और ऐसा पूर्वानुमान है कि दिन में धूप रहेगी, शाम को बारिश हो सकती है। तो फिंगर क्रॉस करते हुए प्रे कीजिए कि आज शाम बारिश हो जाए, गर्मी से हमें थोड़ी सी राहत मिल जाए।

आपके लिए मन की बारह बच्चे मिनट में है और ये वक्त है

छोटी सी बात से उनके लिए गीत लता मंगेशकर की आवाज सजा हुआ और योगेश के बोलों से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा आज हम सुनवा रहे हैं गीतकार योगेश की कलम से निकले हुए गीतों को।

मेरा फिल्म से यजीत लता मंगेशकर की आवाज में योगेश के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में अधूरा।

0: दो जोड़े विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगे। अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम चलाएंगे स्मृतियों के बीच।
2: बधाई हो
0: कृष्ण के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आगे।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

consideratiu,

सुरीली धड़कन कार्यक्रम है यादों की महफिल।

स्टेज सजा हुआ। आज सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हमने यादें सजाई हैं योगेश की कलम से निकले हुए गीतों के साथ। अगला गीत हम सुनने वाले हैं किससे,

से अपने पराये चरण से यशोदास आशा भोसले की आवाज में योगेश के बोलों को जैसे वकील लहरी ने संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। योगेश के बोल है, मदन मोहन का संगीत है।

स्क्रीन भर कर स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। सफर कितना सुरीला हो जाता है अगर सब साथ हो, और यही साथ अगर एक साथ हो तो मजा अलग ही आता है। आज की इबारत हमने लिखकर भेजी आपको, और उस इबारत को हम पढ़ना चाहते हैं हमारे उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर वह इबारत नहीं पढ़ी है। तो चलते हैं उस इबारत की ओर। हमने इबारत लिखी कि एक लड़की बोली, मेरे पास तो सब कुछ थोड़ा ही है, पर मुझे विश्वास है कि आने वाले पल पर जो मेरे लिए खुशियों का ताल बन जाएगा, और नदियां जैसे अपनी धारा के संग चलती है, मेरी जिंदगी का सफर भी चलता रहेगा। अगर उठेंगे सबके कदम दूसरों की मदद के लिए, तो जीवन के दिन कहाँ छोटे रह जाएंगे। तो चलो किसी की मुस्कुराहट के लिए भूल जाते हैं कि कुछ लोग क्या कहेंगे, और यही बात याद रखते हुए हम चलते हैं आज के सुंदर सुंदर संदेशों की तरफ, जो कि आप सबने हम तक हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनकी कलम को मैं प्रणाम करती हूँ और उनकी लिखी हुई कुछ बातों को आपके साथ साझा करती हूँ। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत जीवन की उम्मीद, विश्वास, इंसानियत का संदेश देती है। जैसे नदियाँ निरंतर बहती रहती है, वैसे ही जीवन भी चलता रहता है। अगर हम अपने कदम दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाएं और किसी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें, तो जीवन के छोटे पल भी अनमोल बन जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी, इस बात की चिंता छोड़कर सदैव अच्छे काम करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं, मनुष्य के जीवन का सफर नदी की बल्की धारे के समान निरंतर गतिशील रहना चाहिए। हम इसे प्रवाहमयी जीवन के रूप में देखते हैं। ठहराव को जीवन के अंत के रूप में देखा जाता है, जैसे कि नदी की धारा सुख दुख रूपी किनारों के साथ ये अपनी गतिशीलता बनाए रखे हुए हैं। हम अपने लक्ष्य सागर में समाहित को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हमें जीवन में कहीं नहीं रुकना चाहिए जब तक हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है, हर चुनौती में एक नया सबक तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन का सफर कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर पल एक अनुभव है, इसलिए अपनी गति और सरलता के साथ जिए। हमारे गौर श्रोता ने बहुत अच्छा लिखा है कि जीवन की सच्चाई को बखूबी बयां करता गद्यांश संतोष का आनंद दर्शा रहा है। यहाँ थोड़े में खुशियों के साल उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना और अपने जीवन को प्रसन्न बनाए रखने की बात कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, संदेश यही है। पर इसके साथ आपने गाने भी चुने हैं, तो आइए देखते हैं आपके गाने और हमारे

ही एक्शन होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ दया और उसका ही उल्टा हो जाता है याद, दया याद। अगर हम किसी पर दया करें तो वो हमें याद रखता है। ऐसा ही है राही और उसका हो जाता है हीरा, राही हीरा। तो जो राहों में चलता जाता है वही हीरा बनता है। ऐसे कई सारे शब्द इस पृथ्वी पर घूम रहे हैं। तो आज के पूरे कार्यक्रम में आप ढूंढते रहिए ऐसे शब्दों को। अगर कोई शब्द याद आ जाए तो जल्दी से हमारे फेसबुक पर दीजिएगा, क्योंकि लगातार अनवरत आपके वो शब्द मैं पूरे कार्यक्रम में पढ़ने वाली हूँ। तो जब जो शब्द याद आए, तीन अक्षर का, दो अक्षर का, जो भी याद आए जल्दी से भेजिएगा। और अगला गीत मैं आपको सौंप रही हूँ, बताइएगा इस गीत के

सुने थे किशोर कुमार की आवाज में, सचिन देवर्मन के संगीत से सजा हुआ। हमने पूछा था कि इसके गीतकार कौन है और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, मजरूह सुल्तानपुरी। और

नहीं है फिर भी करके दे दिया इसमें, उसमें आपको ये आवश्यक अनुसार आपको नोटिस से 2/12/2004 के बीच में होगा, अपने खुद का एक पेरेंट का देना होगा। इसका जन्म 2/12/2004 का बात है, वो दोनों पेरेंट्स का अपने सेल्फ।

किशोर कुमार की आवाज में है तो जयपुर के बोलों से सजे हुए शंकर जी किशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत सुनाया कि बिल्कुल जो फिल्म अंदाज से लिया गया है और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने पिछले पूछा है कि मैं थोड़ी देर से दूरी हूँ क्या कर रहा है बताइए तो उल्टा सीधा तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा राही का उल्टा होता है हीरा और उसका कोई अर्थ भी होता है ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सीधा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए

निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ सुनने की आँख होनी चाहिए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे पता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर जाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और भाई भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। इसमें अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम ठीक से नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। इतनी बड़ी चीज सिखा गए, ठीक से नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी सब तरह से हना इसे, आप किस तरह से जी रहे हैं आप पर निर्भर करता है। जिंदगी संग्रादित है, जिंदगी को चलती है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मदद बनती है। अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता जी पिताजी के गुजर जाने के बाद उनका भाई जो है वो पंचायत करते रहे हैं, तो गांव में तीन बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब निकट स्थिति आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं थी। मदद करने से जो चीजें मिलती है ना, कुछ कहीं नहीं होती, और मैं हमेशा करती रहती कभी टीचर की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती, कभी कोई भी अच्छी मदद करनी चाहिए। बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं। मदद जरूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं। पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथाश्रम में गए रखना करते हैं। जैसे अभी के माता पिता नहीं है, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाए तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो अर्थात कीर्तन सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, मन रखो यानी मन बात कर खाओ, और उनके पिताजी ने भी यही सिखाया है उनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी से पैसा देती हूँ, मैं ग्यारह साल की हूँ, लोग मुझे अभी भी देखते समझते हैं नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा इसका ईश्वर के लिए देता है। बात तो बड़ी अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अभी गीत की तरफ। हमारे श्रोता ने देखा है कि मेरी माँ ने सिखा है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ, ये नाम सिखा रखा। हमारे श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है। उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आँखें भी आँखों के बैंक में डोनेट कर दिए, ICI बैंक में डोनेट कर दिए। इतना अच्छा काम किया, आपकी बाकी आपकी आंखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं और चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा था, ये बात पिताजी कहते थे, हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा

मैं संजीव बदिकिया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासी चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक स्तर को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे कुछ श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और नीला मिश्रा को जो एक ईसाई वाला रोल किया, मूल पालिका रोटीना जी के फिल्म चल रहा है

mas muito.

देख कहाँ के लगा कर।

होती है और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को

बैठ कर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं इन बातों को भूल कर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपने आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नजरिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे और जी लेंगे अपनी जिंदगी को अपने तरीके से और साथ में आस पास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराने के

कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा। पैठी बावरा प्रिंसेस मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

0: हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही, क्या बात है।
1: पूरी
0: पसीने में हो

पूरी पसीने में हो रही है ऊपर से लेके नीचे गर्मी हो रही है किसी बता नहीं सकते। अगर जब बाहर आप खुद देखने भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है। बात तो बिल्कुल सही है और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कह रहे हैं ना, रिविजन होते रहना चाहिए होते रहना चाहिए। और गर्मी के जो है ना इसमें पसीना जब बहता है बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है जो हमारे शरीर से, तो बहुत ज़्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज़्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूर घूर करके पानी पीते हैं तो शरीर में नमी कमी रहती है। और ऐसे तेल जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पर भी किसी तरह से कोई कमी ना हो। और ज़रूरत ना हो तो घर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले थे, है ना, ताकि ऐसा लगता है कि नहीं आज भी जाना जरूरी है तो पूरी तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ से सर के भी हम शॉल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप और साथ ही आप जैसे खीरा है कस्तूर है इस तरीके के पानी वाले जो फल हैं जो सैलड हैं वो आप जरूर खाएं, और खाने से ज्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि दिन चल रहा है ना, बच्चे भी आए हैं घर में और मेहमान भी है कुछ ना कुछ, तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि तालाब बिना ना हो, और अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में लेना लें, और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन हल्का इस तरह का रेसिपी बना लें, इस तरह से हल्का फुल्का ही खाएं जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरीब से भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज़, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक हाथ में भारी भोजन किया है चावल के व्यंजन के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तरह तरह के चावल के व्यंजन आपके लिए में कोई स्पेशल बनता है क्या तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं पर हम चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी पक्षियाँ बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि हम किस तरह का, क्योंकि आजकल सखा भी बनाते हैं, हम बिल्कुल हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सखाओं में, तो आप बताइए आपको कौन सा कौन सा ऐसा व्यंजन है बहुत ज़्यादा पसंद है जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है। बिल्कुल, और आरती आज हमने हमारे जो भी सचिव सिंह परिवार श्रोताओं को शब्द दिया है आलोचना, शब्द यहाँ से स्टूडियो से

बहुत आसानी हो जाती है।

शब्द एक कलम और करी से बना है, जिसमें कलम की कलम और कारीगरी, जिस तरह से कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्र या ब्लॉक पेंटिंग का तकनीक अपनाई जाती है। बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें कुछ पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना ज्यामिति आकृति को, इनको भी सबको शामिल किया गया। बिल्कुल, और इसमें कलमकारी साड़ियाँ विभिन्न अवसरों के लिए एक बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई। मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल है। प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनकी विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवन रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेंजा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं। जी, अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सचिन, तो इसमें कई तरह के चरण है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है उसमें कृष्ण राग लीला है, पार्वती विष्णु या महाभारत रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियाँ कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है। और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं। और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवन के रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और ज्यादा गति बना देता है। बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक चीज को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो तो काली रूपरेखा जो एक इसमें बॉर्डर हमेशा जिसमें आकृति की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत लगाया जाता है। एकदम जितना अलता अलग ही देगी एकदम पॉजिटिव। और हम देखिए ना जाके दुकान पर से कितना बार्गेनिंग करते हैं। हाँ, हम जानते ही नहीं कि साड़ी अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें बहुत मेहनत है, मेहनत है। पीले रंग के लिए हल्दी का उपयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। विशेष रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन कराते हैं। क्या बात है। और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम सीरम पर्चे के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर भी कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है। और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। ये रंगों और प्राकृतिक बनावट को प्राप्त करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त

0: से एक जैसी नहीं होती, मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और इसकी जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियाँ इतनी सालों तक चलती है कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

विषय पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन। भी चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभालता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं, इसका कह सकते हैं कि वरदान की तरह है। बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए GPS में ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं। बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयाँ मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी ऐप भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती है, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बड़ी उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो कुछ वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है। और मोबाइल फोन अब नए विरासता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है, लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, उस दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है। बिल्कुल, क्या बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन का होने लगता है, क्योंकि वो बाहरी दुनिया से खटके जाए हम तो फोन पे गर्दन छिपाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाएंगे और वो हमारे शरीर की बनावट से भी बुरा असर डालता है। क्योंकि इसी तरीके की उसमें हम बैठे रहते हैं, इसी तरीके का पोज बनाए हम बैठे होते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा शरीर को परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी। जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं, तो छोटे छोटे बच्चे जाएंगे खेलते अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका जाया जाता है। बिल्कुल, वो कहीं छूट कर सकते मिल रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आती थी कि अब बच्चे की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट के चैटिंग में लगे रहते हैं। ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट

जबकि आई नैसी आंधी सब उसने उजले इससे इससे सीखा उससे सीखा ज्ञान का पान कर लिया। अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करके करते सकते नहीं है उनके हाथ वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं नींद उड़ गई उनकी लेकिन रातों को भी बचाते हैं वह इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार शॉर्ट कॉस्ट में फंसे कभी ना हो जीता जंजाल डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं बुजुर्ग बने हैं बड़े सियाने दवा खोज कर पाते हैं उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो

चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के

समझे समझे तब उसका उपयोग करें ताकि आप किसी स्थिति की चीजों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरह के जो विज्ञापन आते हैं जो लॉटरी निकला या फिर इस तरह की चीजें आती हैं,

से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है हमारे

पोस्टर में इसी तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में

आलोचना है ये बहुत ही अच्छा विषय है और एक ऐसा देखा जाता है कि लोग वाहवाही को सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और पीटा पीटा, तो आलोचना ऐसे ही तिक्त रसयुक्त ऐसी चीज है। लेकिन तो जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है। क्या बात है, अच्छी मूल्य जानकारी हमें हमारे श्रोता ने दीजिए। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो। हमारे श्रोता जी लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोषों का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है। लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है और हमें आलोचना से घबराने की वजह उसे ठीक की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनकर देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपनी किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों में निरंतरता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को छोड़ी नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता की भावना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है। सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है। बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है कि बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे,

चीजें की जगह हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रहा है। तो आज हमने क्या है चावल के व्यंजन जो हमारे हिंदुओं को बच्चे से बहुत अच्छी चीजें सारी रेसिपी होती है जिसको हम जाके बेहतर बना सकते हैं। तो पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली है? पहली रेसिपी में बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर। क्या बात, मीठी मीठा की सुबह करते हैं ना। तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीते हुए, 1 चम्मच घी और 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम ड्राई फ्रूट आप ले सकते हैं। जो भी आपको चाहिए होगा आप वो ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर इसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसे इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद की जितनी भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद है वो आप उसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए।

आधा घी डाले, 5 हिस्सा इसको भूनना है, फिर 1 गिलास जो दूध लिया है उस आटे में मिक्स करना धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा घी है और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे आप इसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है जो आपने भून के रखे हुए हैं वो चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी इसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर चीज़ें सही से इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो

उस टाइम क्या होता है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं जो लाइफ स्टाइल होती है वो आपको काफ़ी

0: क्योंकि आपको तो उसमें नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड टू माय मेडिकल टीम।
1: आप रेडी हो गई थी और और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूँ वो सेवा हो। ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूँ।

में भी काम करने की ताकत आई थी मुझे,

0: इसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं, स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है एस्ट्रोजन फिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और क्योंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
1: क्या था मेडिकल इंडिया का
0: एक ऐसा मिशन था कि सारे

सर्व करें जो उनके फील्ड से बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द वेलफेयर शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल क्रिकेट साइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, इस जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो बहुत लो था 2008

को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे वो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है जो बहुत अच्छा है क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की हूँ कि कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियाँ कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको एम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनके एक लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, क्योंकि कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटली पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बिकॉज एजुकेटेड है, आज मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं चाइल्डहुड की जो लेडीज थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्सेज जन्म देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, कि सबका मानना सकती पेट के द्वारे दिल पर राज करते हैं, उस मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड को दिखा देते हैं। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, चीज मैनेज करना है, आपको आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेट

प्रिपरेशन होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्थ के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ कल्चर का हुआ। तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं, शुरू किया था फीमेल सुसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर काउंसलिंग एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स साइड, वो कोविड से शुरू किया है। फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो कोविड-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली आई सी पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली आई सी डालने के बाद। हमारा फिर महाराष्ट्र का गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था, हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अच्छे वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेट ऑफ इंडिया जैसे आ रही है। अफकोर्स सीएम से डिप्टी सीएम हेल्थ मिनिस्टर सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कॉन्ट्रीब्यूशन जो टेली आई सी टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर्स, अफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग एज ए गाइडेंस रखा, उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया। क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडिकल नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपसे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 1.6 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और हाँ उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन दिया, एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न

सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे,

0: हर प्रोग्राम में सीपीआर स्टेशन होता है, तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए। आप कभी भी फाइनल वर्ड्स भी ऑनलाइन सीख सकते हैं, बस प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। और अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। और अगर हमारे देश में अगर देश पहले 2% ही था और हमारा टारगेट ये कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए, तो वो एक अच्छा मकसद है। एक ज़माने में मैं 2000 की बात कर रही हूँ कि कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था, लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है। बहुत अवेयरनेस आया हुआ है, बस एडॉप्टेशन नहीं आया है और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला डॉक्टर CPR मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था तो मैं उसको CPR नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगी, टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप CPR वन में आपने देखा पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो। एक बार में कॉर्नर में एक पॉइंट है वहाँ पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो और जब तक करते तो एम्बुलेंस आएगा आपका पेशेंट चला जाएगा। एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला, अगर आपने 30 से 60% चांसेस है कि प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो सभी कोशिश कर दी थी हमारे भारत के लोगों ने इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें चाह रहे हैं मैदान में वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में कोशिश ये की, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया और हम ठीक हो जाते कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में अगर आप एक दिन की भी जान बचा सकते हो 5 मिनट से फिर से, तो मुझे लगता है। और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और एक भी मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूँ कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन हैं कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल, तो इस कार्यक्रम को देश में आज के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को देंगे?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की टेक्निक जो हो रही है, तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हैं और डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स होता है उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ना कि डर की कोशिश की। आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं या फिर हमारे मेडिकेप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेडिकेप इंडिया @gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू। मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम से बोलूँगी, जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर रंजन जी लिखे थे, तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटे की बोल थी, 2008 में बोल रही थी कि मेरी माँ मुझे बचा जाए, तो ऐसा गाना था। तो अभी जो क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था। और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई चीज़ नहीं बची जहाँ से अच्छी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और

कोई

जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इन पर जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट

question, Holy Spirit.

on to

Merci.

0: सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सुबह

करती है कि उन्हें हम हर पल जीना चाहते हैं।

और 9192

सबको मोहित करने वाली

Jesus

मादक पदार्थों के अभाव

में एक्चुअरी का बड़ा गोडाउन होता है वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिविजन में एयर फ्रेट शॉप की जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा एयर फ्रेट शॉप है उसमें डीलर्स का रेमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को

ಅತೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

Viaggio, salito sono agli stadi, non mi

0: फिर तो मैं बस पर न पहुँच कर आधा घंटा लेट
1: आऊंगी।
0: 6:30 यहाँ पहुँच जाना चाहिए। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग वक्त तय करते वक्त ये क्यों नहीं सोचते थे कि वो वक्त पर पहुँच ही सकते हैं।
1: और कई बार ऐसा भी हो जाता है, यू नो 11th आवर पर काम निकल आता है।
0: काम क्या होता है, आदमी की विल स्ट्रॉन्ग करनी
1: है। देखिए अब हम दोनों को ही इंतजार करना है तो क्यों ना अंदर बैठ के किया जाए। आई मीन इफ यू डोंट माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी विद मी।
0: मेरे ख्याल है कोई फर्क नहीं, अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता है
1: मुझे भी। इसीलिए

0: आप चिंता इंतजार कर रहे
1: हैं
0: मैं पूछ रहा था अगर कोई शख्स आ जाए तो आपको मेरे साथ बैठक देखकर बुरा तो नहीं मानते
1: वो क्यों बुरा मानने लगा उसकी मेरी अपॉइंटमेंट 6:30 की थी 7:00 की है आप अपनी बात कीजिए
0: नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है
1: मेरी कॉफी में सिर्फ 1 चम्मच
0: मेरा ख्याल है ज्यादा मीठा डालने से कॉफी का मजा खराब हो जाता है वैसे यूरोप में लोग कॉफी बिना चीनी और दूध के पीना पसंद करते हैं
1: आप यूरोप में
0: जी हाँ मैं हायर स्टडीज के लिए जर्मनी गया
1: क्या करते हैं
0: मैं इंजीनियर हूँ ऑटोमोबाइल में स्पेशलाइज

0: मेरा ख्याल है आप मिस्टर हटा सकते हैं। वैसे कॉलेज में याद हो मुझे विकी का शरीर पका दी।
1: थैंक यू, तो बहुत मजा आया आपसे मिलकर। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, घर पर आज देने से कुछ लोग आए।
0: ओके।

0: แต่ว่าบูพินไม่ได้ไม่ต้องโดนที่ติดมากครับถ้าจะไม่ถึงคนจะต้องมีสมาธิที่สุดก็ไม่ใช่หนังอยากจะทำให้ติดใจกับน้องให้ที่แท้จริงนะให้กำลังจะที่มีเสถียรภาพของเรื่องทุกอย่างถ้าได้มีการตัดสินใจในเสถียรภาพของเรื่องนี้มาเสร็จสุดที่ถ้าได้เห็นว่าสภาพใจของเราเป็นตัวสมิงเล็กๆที่ว่าจะทำให้ทุกคนรู้สึกทำโลกนี้ได้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะมาบอกที่นี่不知道的你说什么你应该去找一个伴侣
1: 他的意思是什么时候的人生是不是不你要继续的生存你那么这不会好吗怎么会有这个事而是怎么你也在他怎么说也不然真的因为好吗是故意的感觉所以就是如果你要是没什么好的事情就按照流行的事情为什么是没这个事情
0: लेकिन लाख कोशिश करने का तुम कम ना कर सकते
1: हो क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई और इसकी शादी में आपके भूलने की जरूरत भी क्या है शादी के बाद भी तुम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रहते हैं
0: मैं तो जब भी ऐसी बात सोचता हूँ एक अजीब सा डिप्रेशन होता है
1: हो सकता है बचपन में इमेच्योर माइंड होता है ना बस इसीलिए भावुकता हावी हो जाती और उस भावुकता में अंधे होकर हम ये भूल जाते हैं कि प्रेमिका और दूरी दो अलग अलग चीजें देखो ना तुम्हारी बीवी को तुम्हारे साथ सोसाइटी में इतना बैठना है तुम्हारे उनके सुरक्षित शौक से

लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का चौथा और अंतिम

जीवन से जुड़ी कुछ यादें। जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको

magnitud.

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, जिसे लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा

0: सरकार की ओर से 25,500 फीट करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला कि सरकारों के एजेंसी राज्य में बच्चे का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिविजन में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा फेयर प्राइस शॉप है उसमें डीलर का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।

ऊपर भी कट।

sometimes, and to fix up some in it. Dr. Vincent McGuinness.

difficult when a car goes

Uroveša Čampijan, Miroslava Minčeva od Pudja i Krišku Lali, Žilin Janko Šarakar sa Hlaskan Hasidija, Jirin Venetan sa Dušri od Miroslava Minčeva i Hlaskan Zadrži. The new Chandigarh में आते क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। राजस्थान के एलिमिनेटर राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी की टीम ने 97 रन बनाए हैं। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन जीते 2028 की मेजबानी की अधिक करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रैली 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 66 पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों पर ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष ग्रहण पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा और संविधान सभा में सामान्य नागरिक संहिता विधेयक पारित यूपीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या चाहिए।

整体下去，

Jesus.

फिर लखनऊ होते हुए बंगाल तक मुंबई आ गए। मुंबई में पढ़ाई तो करनी ही थी, साथ ही कुछ पैसों का जुगाड़ भी करना था, तो परिवहन डिपो में वो बन गए चेकिंग क्लर्क। और तब उनकी तनख्वाह थी सिर्फ 120 रुपए। फिल्मों में काम करने की तमन्ना थी और क्योंकि पहले से एक बलराज फिल्मी दुनिया में मौजूद थे जिनका नाम बलराज साहनी था, इसलिए बलराज दत्त ने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त रख दिया। और अब किस्मत आसमानी का सिलसिला शुरू हुआ। वो भटकते रहे मुंबई की सड़कों पर और स्टूडियो स्टूडियो जाकर काम मांगते रहे। इतने दिनों में सुनील दत्त ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक कर लिया। अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए। इस बार था जब रेडियोन को एक उद्घोषक की जरूरत थी। 25 रुपए प्रति इंटरव्यू के हिसाब से बलराज दत्त रेडियो के लिए फिल्मी हिस्ट्रियों के इंटरव्यू किया करते थे।

capacity to mean destiny,

be done to me.

chapter of Ed.

बहुत सुंदर है। श्याम की कलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन एक निरंतर प्रवाह है और हमें हर पल को जीना सीखना चाहिए। मैं सोचती हूँ कभी कभी कि जीवन तो चौधरी का चांद होना चाहिए,

Yes

बचकर पकड़ने की कोशिश करो उतने ही तेजी से फिसल जाते हैं। हाँ, कोई आपके दिए गए सारे प्यार के बावजूद किसी और को चुनता है तो उसे ऐसा करने दो। कोई बिना वजह खूबसूरत रिश्ते में दूरी बनाता है तो उसे जाने दो। उसको चुनना जिसे आपको कभी चुना ही नहीं उसे उसके हाल पर छोड़ दो। हाँ, ऐसे रिश्ते में

Fisher

अक्सर हम सबसे को साफ साफ देख नहीं पाते और जीवन

全出则进。

केंद्र खंड किसी उपन्यास के आखिरी पन्ने पर दम तोड़ देती है, तब दिल रोता है, टूटता है, चिल्लाता है,